0: कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें जाने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता।
1: जी सर, लव एंड ऑल, थैंक यू सो

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM।